0: का हुई कमल आई ने बुक खाई बाटो तो
1: एरी ने काका आई फुला टूरे बारी में गेल रही तबो का देली बीस निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटो
0: सबको कटक बीस तक उपचार करो तो सर्वदम सब उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखाया सब पकट लखो कि नहीं हो के पट्टा लगा कर सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदम से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल कर रहा हूँ तर
0: कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केंद्र ले जा रहा है नेपाल सरकार सर्पदम से उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था अत्यंत चिंता नहीं
2: पड़ाई
1: ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकले बात
0: एम्बुलेंस आपूंगा समय लगा के था मर छ संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश छत्ते बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार के खर जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केंद्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीवेनम निःशुल्क उपलब्ध करेलबा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहर पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में ल्याएर सेभ था
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं
5: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
6: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
5: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
6: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
7: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 98584-89213 इमेल ocmctikapur@gmail.com
8: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
9: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिल्बो नि करत का कैन हो का
8: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो ना कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए
10: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
11: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98481-5143-26
12: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
13: गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासन र नैतिक मूल्यका साथ उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता।
14: हाम्रा विशेषताहरू:
13: दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा पठन पाठन गराइने,
12: शान्त र अनुशासित शैक्षिक वातावरण भएको,
14: आधुनिक शिक्षण विधिको व्यवस्था भएको,
13: अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड दिने,
12: विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रणालीको सुविधा भएको,
14: कक्षा सञ्चालन हुने मिति 2083 वैशाख 15 गतेदेखि।
13: आफ्नो बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि आजै भर्ना गर्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा नै सफलताको आधार।
12: सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली, प्रधानाध्यापक भरत कुमार तिरुवा, सम्पर्क फोन नम्बर 091-560-059 र 98-485-1767।
15: के तपाईलाई थाहा छ,
16: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
15: हो र?
16: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
15: अनि
16: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
15: के छ त विकल्प?
16: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
15: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
16: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
15: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
16: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा, टिकापुर कैलाली।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उ मारे तो तुहन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: नया वर्ष 2083 साल को पावन अवसर में शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह ने अपना संपूर्ण उपभोक्ता लगायत का आमा बुआ दाजू भाई तथा दीदी बहनी हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ।
5: अध्यक्ष कर्ण बहादुर बुढ़ा सचिव पवित्रा चौधरी कोषाध्यक्ष संदेश चौधरी शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह परिवार टीकापुर कैलाली।
4: नया वर्ष 2083 साल को पावन अवसर में शिव शक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आफ्नो संपूर्ण शेर सदस्य संचालक समिति सलाहकार समिति इष्टमित्र शुभचिन्तक लगायत का संपूर्ण आमा बुवा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा नया उमंग र उत्साह का साथ सुख शांति र समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष भीम बहादुर साउद सचिव राजेश्वरी खत्री शिव शक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह परिवार जानकी नौ पाताबार।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आस मुहिम टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ जीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाए मैखन संगे जिम
1: चलो तो चलो।
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बोसेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनक कल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9804610186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। लावा बरस 2083 साल के पावन अवसर में सबको दादू भैया दीदी बहनिया समाज सेवी बुद्धिजीवी स्वदेश तथा विदेश में रहल सबको उनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
2: अध्यक्ष लौटन चौधरी सचिव पंकज चौधरी कोषाध्यक्ष शर्मिला कुस्मी थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्रीय कार्य समिति टीकापुर कैलाली।
1: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा टीकापुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभाव कार्य समिति बचतकर्ता कर्मचारी इष्टमित्र शुभचिन्तक लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: अध्यक्ष भरत रावल उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर रावल सचिव पुष्पराज केसी व्यवस्थापक दीपक बहादुर थापा र टीकापुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा ग्राहक कार्य समिति कर्मचारी इष्टमित्र शुभचिन्तक लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: अध्यक्ष खड्क बहादुर धामी टीकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था परिवार टीकापुर कैलाली। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारी समाजसेवी बुद्धिजीवी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष सन्तोष खड्का महासचिव प्रकाश तिमिल सेना कोषाध्यक्ष टीका शाही टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ टीकापुर एक कैला।

0: से कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आज का कना हो बाबा फिर उस गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर बर बरती रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कही एक आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोगले व्यक्तिमा एक्लोपन परिवारमा अविश्वास र कलहका साथै समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ।
4: गलत एवं भ्रमपूर्ण सामग्रीका साथै अश्लील र नकारात्मक सामग्री पोस्ट र शेयर नगरौं।
3: सामाजिक सञ्जाललाई नयाँ प्रविधि र विषयवस्तुको जानकारी लिने तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने माध्यमको रूपमा सदुपयोग गरौं।
4: अरूको अश्लील फोटो तथा भिडियो खिचेर अपलोड गर्ने द्वन्द बढाउने हिंसा फैलाउने र चरित्र हत्या गर्ने सामग्रीहरू नराखौं।
3: अरूलाई होच्याउने निज देखाउने तथा तथ्य बंग्याई चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कार्य दण्डनीय हुन्छ।
4: यस्ता कार्य गर्नेलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार साइबर अपराधमा कानूनी कार्यवाही हुन्छ।
3: सचेत बनाऊ
4: सामाजिक सञ्जाललाई सद्भाव सकारात्मक विचार र प्रेरणा फैलाउने माध्यम बनाऊ।
3: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকেল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহাঁ আপন অনুহার বিগড় কে ঘর সে বাহার নাই নিকরছু।
0: উহে মারি তো তুহিন উহাঁ পাঠাই তো। ইহাঁ হের ই পত্রিকা মে লিখাল বা মনীষ মেডিকেল মে আব ছালা সম্বন্ধী সমস্যা রহল বিরামী হুকরন বড়িয়া ডাক্তার হই সে উপচার হুই তাই তোর সমস্যা ফেন আসতে বা যাইবে তো সমাধান হুই যাই।
1: এ হো দাদু, অপন অনুহার বিগড় কে পরিশান রহু, তব তো মই অব্যহি যাই।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुस्ता रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046747।
4: गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में भर्ना खुल्यो।
5: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिङ स्कूलमा शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि पीजीदेखि कक्षा 12 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
4: गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिङ स्कूलका विशेषताहरू:
5: 4 GPA ल्याउन सफल भएको,
4: एसईईमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पास गराउन सफल,
5: डिजिटल प्रविधिद्वारा अध्ययन गराउने
4: आफ्नै पूर्वाधारको व्यवस्था भएको,
5: साथै खेल मैदानको सुविधा भएको। गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिङ स्कूल टीकापुर एक कैलाली, प्रधानाध्यापक गजेन्द्र बुढा, सम्पर्क नम्बर 9848463601 र 9742390377।
6: टीकापुर नगरपालिकाको सूचना: नगरपालिका भित्र सञ्चालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौ।
7: भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौ।
6: यस टीकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्र भित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा, बाटोमा टहरा लगाई पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौ।
7: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि जथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौ र गराउ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्र पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। शक्तिमा खुल्लक बेदबाँस उद्योगमा म्यारुकरण गौहीमा रोजगार देती गौहीमा रोजगार पाके म्यारुक र खुशी। कांग्रेस के उम्मीदवार है असहयोग करना नेता हुकरण जिम्मेवारी से हटैना सभापति गगन थापा के धारणा नेतृत्व से कार्यकर्ता हुकरण जवाब दे पर्ना मुख्यमंत्री शाह के कहा। विकास निर्माण में विपद मैत्री योजना है प्राथमिकता देती टीकापुर नगर पालिका बाजार व सुशासन से लेके सोमवार से लेके देश भर मूल्य पारदर्शिता सप्ताह शुरू हुई थी। चोरी तस्करी उछाड़ा पशु चौपाय से बनुआ संरक्षण के मुख्य चुनौती रहल भगरे सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष सिंहराज बुड़ा के कहा। टीकापुर नगर पालिका सात शक्तिमा खुल्लक तिल गंगा बेदबास उद्योग से मेहरूकरण के लाग गौहीमा आय आर्जन की डगरा खुललवा। मलेशिया में अवस्त को भारत में काम करके सिप सिक के भरतलाल विश्वकर्मा से बेदबास उद्योग खुलल पासे यहां के महिलाओं का रोजगारी के अवसर खुललवा। भरतलाल से खुल्लक तिल गंगा बेदबास उद्योग में 31 जानी मेहरू का काम करती रह बाटे। 4 वर्ष से बेदबास सामग्री बनाईना काम हुई रलक स्थानीय शांति चौधरी संतुष्ट बाट घर में तथा समेत घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढ़ी के आर्थिक सहायता में शक्ति कर्णाली सामुदायिक बनुआ में 3 महीना बेदबाँस के समेत सामग्री बनाएल पाछे तालीम पैलक शांति घर खर्च चलैना करके ज्याला पैटी रह बाटे। काम में ऐना जैना समय में श्रमिक के इच्छा अनुसार रलक ओर से श्रमिक हुकरा फुर्सद के समय में आपन इच्छा अनुसार काम करना श्रमिक आरती चौधरी के कहाबा। उद्योग के मलिकुआ भरतलाल विश्वकर्मा उद्योग में 31 जाने जत्रा महिला और 13 जाने जत्रा पुरुष काम करते बाटे। शक्ति कर्णाली सामुदायिक बनुआ में प्रशस्त मात्रा में पैती रलक बेट उत्पादन रलक ओर से यहां टीकापुर नगर पालिका शक्ति कर्णाली सामुदायिक बनुआ घरेलू तथा साना उद्योग के कार्यालय लगायत से युवा हुकरण बेदबाँस के सामग्री बनैना तालीम देती बाटे। ई तालीम पायल हुकरा सहजे रोजगार पायल बाटे। टीकापुर नगरपालिका के आर्थिक विकास समिति के संयोजक एके प्रसाद न्यूपानी यागे फे सक्कू जहन के समेत कच्चा पदार्थ भारत मन बेचे पर्लक में उद्योग स्थापना हुई पाछे रोजगारी फे सृजना हुई बटोले बाटे। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित भगरैया वन संरक्षण समिति से भगरैया बनुआ संरक्षण के लाग सरकार वाला हुकरण गुहरना योजना बनाएल बाटे। जंगली जनावर मा औसतक रात के समय में गांव घर पैत के बाली नालियो घर पालुआ जनावर खैती रहल पाछे वहां हुकर टीकापुर नगरपालिका है गुहारे परल योजना बनाएल बाटे। विशेष करके बरसात के समय में रात के जंगली जनावर गांव में पैठना पशु चौपाया हो बाली नाली में क्षति पुगैना हुई पासे या का रोकथाम के लाग नगर पालिका है तार जाली के माग करने योजना बनाएल। भगरैया वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष सिंगराज बुढ़ा मगर जानकारी दे बाटे। बुढ़ा मगर के अनुसार एक ओर बनुआ में आयल समेत जंगली जनावर के नुकसान करना बाकल से और ओर चोरी तस्करी और छाड़ा पशु चौपाया के कारण जंगल बचैना में चुनौती हुई बटवागिल बा। 111 बीघा 6 कट्ठा 17 ढूर में फैलल भगरैया सामुदायिक बनुआ में 8 गांव के 800 उपभोक्ता रहल बाटे। बनुआ से वन पैदावार मन से हुई आमदानी के 25% रकम टीकापुर नगर पालिका है तिरे पर्न बा। 25% रकम वन संरक्षण और विकास के लग खर्च करे पर्ना प्रावधान रहल बा। खोज खबर माए घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनती रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम। आदरणीय अभिभावक शिक्षक कर्मचारी प्यारा विद्यार्थी तथा शुभचिन्तक सबैमा नयाँ वर्ष 2083 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। यो नयाँ वर्षले यहाँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि र सफलताको नयाँ ढोका खोलोस्। हरेक दिन नयाँ आशा नयाँ ऊर्जा र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलोस्। खड्ग मेमोरियल सेकेन्डरी स्कूल तथा वर्गीस होस्टेल परिवार टिकापुर कैलाली।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808।
3: कर्णाली मावि टिकापुरमा भर्ना खुलेको सूचना।
4: नयाँ वर्ष 2083 सालको सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै कर्णाली मावि टिकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा 1 देखि कक्षा 9 सम्म अंग्रेजी तथा कक्षा 6 देखि 9 सम्म नेपाली माध्यममा सिमिट सिटमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
5: कर्णाली मावि टिकापुरका विशेषताहरू:
3: बाल विकासदेखि कक्षा 8 सम्म अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा पूर्ण रूपमा निशुल्क अध्यापन गराइने,
4: कक्षा 9 देखि 12 सम्म नेपाली र अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने र सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा पनि अध्यापन भइरहेको,
3: कक्षा नर्सरीमा भर्ना हुन आउने बाल बालिकालाई निशुल्क पोसाकको व्यवस्था भएको,
4: यस क्षेत्रकै एकमात्र प्राविधिक तथा साधारण शिक्षा प्रदान गर्ने संघीय नमूना विद्यालय,
3: योग्य दक्ष अनुभवी तथा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वच्छ शान्त बालमैत्री वातावरणमा पठन पाठन गराइने,
4: कक्षा कोठा खेल मैदान स्वच्छ खाने पानी लगायतका पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको,
3: निरन्तर रूपमा शिक्षण क्रियाकलाप सँगै अतिरिक्त क्रियाकलाप गराइने,
4: कक्षा 1 देखि 5 सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि स्कुल बसको व्यवस्था भएको,
3: अंग्रेजी गणित विज्ञान जस्ता मुख्य विषयका लागि अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था भएको,
4: इन्टरनेट सहितको आधुनिक कम्प्युटर ल्याब विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयको व्यवस्था भएको,
3: शिक्षण गर्दा प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्ड सीसी क्यामेरा लगायतका प्रविधिको प्रयोग भइरहेको,
4: आधारभूत तहमा सम्पूर्ण दलित छात्र छात्रा अपाङ्ग तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको,
3: नर्सरीदेखि कक्षा 5 सम्म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक दिन दिवा खाजाको व्यवस्था भएको,
4: सेनेटरी प्याडको व्यवस्था भएको,
3: विद्यालयको आफ्नै स्कुल बस र सुरक्षा गार्डको समेत व्यवस्था भएको।
4: भर्ना कार्यक्रम 2083 वैशाख 15 गतेदेखि बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म, कक्षा सञ्चालन 2083 वैशाख 21 गतेबाट।
5: सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, स्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता।
3: कर्णाली मावि टिकापुर कैलाली। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 0915164111 र 9854424167।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम और बजेट में आम नागरिक उकरण के सुझाव समेत उद्देश्य से सरकार सुझाव संकलन पोर्टल संचालन में लान बा। एक अलग प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय से समेत डिजिटल पोर्टल शुरू कर लखो। सरकार के आगामी सोमवार के सार्वजनिक करना लागल नीति तथा कार्यक्रम के लग फे नागरिक के ई मार्फत सुझाव दे सकल बाटै जनता के वास्तविक आवश्यकता हो, मौलिक अपेक्षा है समेत शासन व्यवस्था है थप पारदर्शी जनमुखी बनैना ई पोर्टल संचालन में लागल प्रधानमंत्री के कार्यालय से जनायल बा। सरकार के नीति निर्माण प्रक्रिया में प्रशासनिक घेरा से केल समेत सीमित नहीं धर के आम जनता के भावना और जिज्ञासा है। कडर करती प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के मुख्य योजना अनुरूप प्लेटफर्म संचालन में लानगिलक पाछे कार्यालय से उल्लेख करल बा। पोर्टल में प्राप्त सुझाव है प्रशासनिक तह से गम्भीरतापूर्वक समीक्षा करके नीतिगत रूप में कार्यान्वयन में लैचिना फे समेत कार्यालय से जनायल बा जनता के पोर्टल में देहल सुझाव के समेत पाचक अवस्था में ओ सरकार चलक कदम के बारे में जानकारी लेना फे करके सुझाव ट्रैक करना विशेष सुविधा समेत ई प्रणाली में समावेश करल कार्यालय से जानकारी देहल बा। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा से पार्टी के आधिकारिक सदस्यता के उम्मीदवार मन नहीं पर्ला कहके रूखुआ बाहेक के और चुनाव चिन्ह में मतदान कर नहीं पैना बटोईटाल कैलाली के धनगढ़ी में आयोजित प्रदेश ओ स्थानीय तह में केन्द्रित प्रदेश स्तरीय भेला हे समय संबोधन करती वहां क्रियाशील सदस्य हुकरण के रूखुआ बाहेक के चुनाव चिन्ह में मतदान कर पैना व्यवस्था आपन शब्दकोश में नई हिलत बटवा गिलवा कांग्रेस के मनई से चुनाव के दिन में रूखुआ चिन्ह बाहेक के और चिन्ह के बारे में सोच फे नहीं सकना हो सोचे फे नहीं पैना कहती बुझाए धरल हो अपना हुरकल कहती अब वहां समेत यह बात बुझना बटोले बाट सभापति थापा से पार्टी की जिम्मेवारी में बैठल 21 फागुन के निर्वाचन में उम्मीदवार हुकरण असहयोग करलक नेता हुकरण कुछ समय के लाग जिम्मेवारी मुक्त करना समेत बटोले बाट कार्यक्रम स्वरूप पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह नेपाली कांग्रेस भित्तर देखिल आंतरिक विवाद प्रदेश सरकार परिवर्तन के बहसो पार्टी में एकताबद्ध के विषय में उठैटी वर्तमान नेतृत्व सचेत हुके समेत आगे बढ़ना आग्रह करल बा। मुख्यमंत्री शाह से भदौ 23-24 गते देवबार दंपति ऊपर हुईलक आक्रमण स्वाभाविक समेत हो कि अस्वाभाविक हो कहना प्रश्न उठैटी देवबा है निकट समेत टिकट नहीं देना विषय माफे स्वाभाविक हो कि नहीं हो कहना कार्यकर्ता है स्पष्ट जवाब चाहल बटोले रहें। बजार में व्याप्त अनियमितता में कृत्रिम मूल्य वृद्धि और उपभोक्ता ठगी नियंत्रण करने उद्देश्य से सरकार से सोमवार से देशभर विशेष अभियान संचालन करना होगा। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त पहल में मूल्य पारदर्शिता में सप्ताह आयोजन करने लागल बटवा गया। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल के समेत आम नागरिक हुकरण के दैनिक जीवन संगे जोरगिल मूल्य वृद्धि के समस्या समाधान करना ई अभियान संचालन करने लागल बटवा गिलवा। सप्ताहव्यापी अभियान से बाजार पर हुईना गलत क्रियाकलाप रोकना कुशी ढुंगा साबित हुईना विश्वास समेत लगिलवा। प्रेस विज्ञ दहाल से सबको सरोकार रहल निकाय नागरिक समाज और संचारकर्मी हुकरण ई अभियान में सहयोग और बजार में हुईना अनियमितता के खबरदारी करना समेत आग्रह करले बाटे। ये विशेष अभियान में सोमवार से लेकर शुरू होके जे 3 गते सम संचालन हुई नवा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के निर्णय हो। पत्रचार अनुसार प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय से यह कार्यान्वयन के लाग देश भर के निकाय है निर्देशन देते रहल बा। मुलुक के कुल ऊर्जा जड़ित क्षमता के 4,296 मेगावाट पुगल बा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण और निजी क्षेत्र के ऊर्जा उत्पादक हुकन संगे उत्पादित विद्युत के आधार में ऊ क्षमता निर्धारण कर ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय से जनायल बा। परीक्षण में रहल आयोजना ओ समेत वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत से उत्पादित बाहेक के 4,296 मेगावाट की क्षमता निर्धारण करल बा। चालू आर्थिक वर्ष के अंत्यसम कुल जड़ित क्षमता में 4,500 मेगावाट से ऊपर पुगना मंत्रालय से प्रक्षेपण करल बा। हाल निर्माण के क्रम में 3,000 मेगावाट क्षमता आयोजना रहल बा। कलसे निर्माण में समेत जैना तैयारी अवस्था में रहल आयोजना के क्षमता फे समान रहल मंत्रालय से जनायल बा। हालसम 66 केवी से फे उपर करीब 7,360 सर्किट किलोमीटर के प्रसारण लाइन निर्माण होती रहल बा। खोजखर माए गरी विश्राम विश्राम पाछ फेर सेवी सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम। नया वर्ष 2083 साल को सबै शेर सदस्यहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको साधारण सभा सम्बन्धी जरूरी सूचना। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिगापुर कैलालीको पहिलो साधारण सभा तपसिलको मिति स्थान र समयमा हुने भएकाले पूर्ण पार्षद ज्यूहरूलाई आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात सहित यसै सूचनालाई आधार मानि साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा हुने मिति 2083 साल वैशाख 27 गते आइतबार। कार्यक्रम हुने स्थान मूलकुला समितिको सभा हल। समय बिहान 10 बजे। सम्पर्क नम्बर 0915160022 र 9868443562। अध्यक्ष कुमार राज शाही, सचिव परशुराम महतो तथा रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिकापुर कैलाली।
6: जब जब गर्मी महिना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरूको याद आउँछ। म्याङ्गो, लिची, कोला, स्ट्रबेरी, कुल्फी, चोकोबार, चोको फनबार, आहा कति मिठो, मलाई त साह्रै मन पर्छ। यति मात्रै कहाँ हो र, शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमको खोवा कुल्फी, कर्नेटो र पार्टीहरूको लागि फ्यामिली प्याक, पार्टी प्याकका सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेभरका आइसक्रिमहरू र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ। मैले त वर्षेनी खान्छु। अब खाने पालो तपाईँको जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरू। एकचोटि खोजी खोजी खाउँ है।
7: यदि तपाई अमूल्य ब्रान्डका आइसक्रिमहरू बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डिप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ। सम्पर्कको लागि बर्दादेवी डेरी उद्योग टिकापुर 1 ब्लक नम्बर 13, सम्पर्क नम्बर 9854899455 र 9863769622।
8: रियल मिल्क, रियल आइसक्रिम, अमूल्य आइसक्रिम, खोजी खोजी खाऊ यी ब्रान्डका आइसक्रिमहरू जहाँ पनि उपलब्ध छ।
9: वर्षिनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड़ बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक, मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000-75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान।
10: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
11: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
12: मै नै जाइँ। उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घरसे बाहर नै निकर्छु।
11: उहे मारे तो तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, यी पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकलमे अब छाला सम्बन्धी समस्या रहल बिरामी हुकन बढिया डाक्टर होइसे उपचार हुई तवै तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जै।
12: ए हो दादु, अपन अनुहार बिगारके परेशान रहू, तब तुमै अबही जाइम।
13: याद गर्बी, मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला, यौन, कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइती रहल बा। सम्पर्क मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046-77417।
0: विश्राम पासे फेर से स्वागत बा। जल तथा मौसम विज्ञान विभागके मौसम पूर्वानुमान महाशाखाके अनुसार आसको शिस्थारमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का पानी पर्न सम्भावना बा। विभागके अनुसार देशके हिमाली पहाड़ी भूभागमा साधारणतया मौसम बदलन बा। कलसे तराई भूभागमा आंशिक बदलन बा। कोशी बागमती ओगण्डकी प्रदेशके हिमाली भूभागमा कम स्थान तथा बाँकी प्रदेशमा एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी पर्न सम्भावना देखाइदिबा। आज रातकी कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशमा साधारण मेरके मौसम बदलना बा। कलसे बाँकी भूभागमा आंशिक मौसम बदल सक्न बा। कोशी प्रदेशमा हिमालय पहाड़ी भूभागमा कम स्थान तथा कोशी प्रदेशके तराई भूभागमा बाँकी प्रदेशके पहाड़ी हिमालय भूभागमा एक दुई ठाउँमा केल मध्यम वर्षाकी सम्भावना बा। कैलाली के गोदावरी नगरपालिका के मेयर वीरेन्द्र भट्ट के स्कार्पियो शनिचर के रात के अटरिया के सिक्स लाइन सड़क खण्ड अन्तर्गत धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 13 राजपुरमा दुर्घटना होइलवा। कलसे मेयर अपनह चलैलक गाड़ी सड़क किनारमा रेलिङमा ठक्कर होके दुर्घटना होइलक बटोइते आइलवा। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अटरिया से जानकारी देहलवा। सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 01001061 नम्बर के गाड़ी आगे भागमा सामान्य क्षति पुगल बा। कलसे प्रहरी मेयर से मापसे करके गाड़ी चलैलक पागिल और गाड़ी नियन्त्रणमा लेहल। कैलाली गांव चौकीमा धरल समेत जनागिल बा। संयुक्त राष्ट्र संघके महासचिव एन्टोनियो गुटरेट से होर्मुजमा जल क्षेत्रमा ईरान ओ अमेरिका बीचके व्याप्त गोलाबारी के बारे में चिन्ता व्यक्त करती आगामी दिनमा तनाव बढ़ नै देना संयमता अपनाइन आह्वान करगिल बा। पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र संघके महासचिव प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक से महासचिव के वर्तमान समय हे समझौता ओ केलक महत्वपूर्ण छन् रहल कहती थप तनाव रोक्न सकु पक्षे अधिकतम संयमता के साथ आगे बढ़ना आग्रह करगिले हो। गुटरेस से सकु पक्ष तनाव हे समेत उत्पन्न करना वा चलती रलक कूटनीतिक प्रयास से कमजोर पड़ना फे कौनो फे कार्य से दूर रहना आह्वान करल समेत बटैटेलवा। शांति स्थापना में अनेकों प्रयास के बावजूद फे संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान शुक्रवार के होर्मुज जल क्षेत्र में आक्रमण तथा गोलाबारी करल पाछे महासचिव गुटरेस के आह्वान कर लखोई। ये समाचार संगे खोज खबर ओराइल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। सत्री में खुलक बेड बांस उद्योग से महिला उपकरण गांव में रोजगार देती गांव में रोजगार पाके महारो खुशी। कांग्रेस के उम्मीदवार हुकरन असहयोग करुया नेता हुकरन जिम्मेवारी से हटैना सभापति गगन थापा के धारणा नेतृत्व तो कार्यकर्ता है जवाब देह पर न मुख्यमंत्री शाह के कहाई। चोरी तस्करी और छाड़ा पशु चौपाया वन संरक्षण के मुख्य चुनौती रहल भगरैया वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष सिंहराज बुढ़ा के कहाई। ओ बाजार में सुशासन के लग सोमवार से लेके देश भर मूल्य पारदर्शिता सप्ताह शुरू हुई थी। लिटा बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रह राम राम।
14: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
15: जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
14: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रायसिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डी फोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
0: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
15: डाक्टर आउने दिन जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
14: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825367772
16: लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं
12: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
17: ओसीएमसी भनेको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
12: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
17: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैङ्गिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
18: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com
19: ए सन्तेकी आमा पर कान्छाशालाको बिहाको न्यु त आएको छ कसो त जाने विचार छ कि नै त
20: आफ्ना कान्छा भाइको बिहा नगरिकन पन भएन जाउँ भने भयाको मङ्गलसूत्र पन माथि गयो
19: यतिका लागि त सामुएल ज्वेलर्स बनेको बरु अहिले जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याटै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
20: आज त सन्त्याका बाले मनकै पुरो हर्यो
21: सामुएल ज्वेलर्स सुनचाँदीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचाँदी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 9868442408 9846349261
0: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टिकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रहला कोर्से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुक्रान यह सूचना से जानकारी कराइती विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टिकापुर कैलाली
22: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको आइतबार र बुधबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली
23: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, इष्टमित्र, शुभचिन्तक, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख, शान्ति, समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अर्जुन वाच सेन्टर, बलभद्र चौक, टिकापुर, कैलाली।
2: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य, सेवाग्राही, संचालक समिति, सल्लाहकार समिति, कर्मचारी वर्ग, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: अध्यक्ष टेकेन्द्र बहादुर धामी, व्यवस्थापक धनबहादुर बुढा मगर, हरियाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, टिकापुर, कैलाली।
4: नयाँ वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक, व्यापारी, शुभचिन्तक, दादू भैया, दीदी बहनी हुक्रनमा सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
5: हमारे यहाँ थारू पहिरन के लहंगा, चोलिया, धोती, सिलाई करना के संगे रेडीमेड भी उपलब्ध कराया जाए और कुर्ता सुरुवाल, फैशन डिजाइन के कपड़ा सिलेना और सिलाई कटाई के तालीम फे करा जाए। एक तो सेवा करना मौका जरूर देवी।
4: अभी फैशन बुटीक, सामुदायिक पुस्तकालय भवन, टिकापुर, कैलाली। संचालक प्रतीक्षा चौधरी। फोन नम्बर 9868770825।

0: कापी रहिथ कबु पेन्सिल रहिथ कबु झलै फटाका आजिथ काकना हो बाबा फ्यो ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहेर
1: ओहो इ बुढा लिखले का हुइति जलम भर भर बरैति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रटगे यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबु लड़का कहाँ पी हरी थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुई थी कहे आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417
6: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ दिना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाए मई फैन संगे जिम
1: चलो तो चलो
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बोसेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनक कल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9804610186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। नया वर्ष 2083 साल को पावन अवसर में शिव शक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आफ्नो संपूर्ण शेर सदस्य संचालक समिति सलाहकार समिति इष्टमित्र शुभचिन्तक लगायत का संपूर्ण आमा बुवा दाजु भाई तथा दीदी बहनी नया उमंग र उत्साह का साथ सुख शांति र समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष भीम बहादुर साउत सचिव राजेश्वरी खत्री शिव शक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह परिवार जानकी नौ पाताबार कैलाली। लावा बरस 2083 साल के पावन अवसर में सबको दादू भैया दीदी बहनिया समाज सेवी बुद्धिजीवी स्वदेश तथा विदेश में रहल सबको उनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
2: अध्यक्ष लौतन चौधरी सचिव पंकज चौधरी कोषाध्यक्ष शर्मिला कुस्मी थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्रीय कार्य समिति टीकापुर कैलाली।
3: शैक्षिक सत्र 2083 का लागि हिमालय मावि घियामा भर्ना खुल्यो। नयाँ वर्ष 2083 सालको सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित शैक्षिक सत्र 2083 का लागि हिमालय मावि घियामा कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेकाले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई समयमै भर्ना गर्न हुन सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। हिमालय मावि घियाका विशेषताहरू शान्त वातावरण सृजनात्मक तथा दक्ष शिक्षकद्वारा पठन पाठन गराइने कम्प्युटर ल्याब तथा विज्ञान ल्याबको व्यवस्था भएको प्रधानाध्यापक हिमालय मावि घिया कैलाली।
0: सहकारीको सिद्धान्त हातमा हात सामुदायिक सहकारी तपाईँको साथ। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेर सदस्य संचालक समिति सल्लाहकार समिति कर्मचारी वर्ग इष्टमित्र शुभचिन्तक लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति एवं समृद्धिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष पल बहादुर बस्नेत व्यवस्थापक दीपक कुमार वैद्य सामुदायिक सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार शक्ति कैलाली। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक व्यापारी शुभचिन्तक दाजुभाइहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ दैनिक उपभोग्य सामान पाइनुका साथै मसालाका विभिन्न आइटमहरू पाइन्छ जस्तै चिया मसला अचार मसला चामल दाल तेल नुन कालो नुन लगायतका थुप्रै सामानहरू पाइन्छ। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। रीतिका मसला उद्योग सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको अगाडि संचालक भक्त बहादुर तमट्टा सम्पर्क नम्बर 9844333821। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
4: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण शिक्षाको लागि आईटी कम्प्युटर टेक्नोलोजी संचालक संजय चौधरी, मोबाइल नम्बर 9848 69 60 20, पुरानो खाने पानीदेखि 100 मिटर तल।
1: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको आइतबार र बुधबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
2: मुर्गी दाना देना जाला
3: एक तो सपा का मुर्गी नारे लत्ती से डुरेले से बक्सा की आनो हारी
2: झटका चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस आकर बेन घर भीतर आई लागी कल से भगे दी
3: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खादी कहीं का भगाए खुद लखो का
2: आरम कीड़ा फटिंगा मुर सांप सिर नीचे आकर कहीं का फलाम को जारी लगा बात सपा मुर्गी खेती बुगाई नहीं देखी बेन अपना दाठी डूर बिना
3: हो बिना था क्या करना हो सपा देखती की डर नाग लगना रही था देव सपा तो अपना घूमकर बारी वोट कर ली था
2: हमारे खेल सापन से डरे ना नहीं बोली मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पोती रक्षा करस लाख वह अपन बचाव करस लाख सांप दस ना कर था
4: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई वह नी जीस के साप मने देख कर डरे था नी चला कर दूर रह लसी साप नी दस्त पर मुखर खरीना फाजा बाहर निस्कर जाना मग घास काटा बेर ख्याल बेर ज्ञान बेर छू बेर से मनै मही मार्गवार कना सबस्क प्रतिरक्षा कना क्रम साप दस लाख मनै सापन व्यक्ति की मारक लाग रह उसी का करबे फिर साप दस लाख रह
5: सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेती था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, इष्टमित्र, शुभचिन्तक, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमंग र उत्साहका साथ सुख, शान्ति, समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
8: अर्जुन वाच सेन्टर, बलभद्र चौक, टिकापुर, कैलाली।
0: नयाँ वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक, व्यापारी, शुभचिन्तक, दादू भैया, दीदी बहिनीहरूमा में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
9: हमारे यहाँ थारू पहिरन के लहंगा, चोलिया, धोती, सिलाई करना के संगे रेडीमेड भी उपलब्ध करा जाए और कुर्ता सुरुवाल, फैशन डिजाइन के कपड़ा सिलेना और सिलाई कटाई के तालीम फे करा जाए। एक तो सेवा करना मौका जरूर देवी।
0: अभी फैशन बुटीक सामुदायिक पुस्तकालय भवन, टिकापुर, कैलाली। संचालक प्रतीक्षा चौधरी, फोन नम्बर 9868 70 08 25।
10: नववर्ष 2083 सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने मूल नाराका साथ विद्यालय भर्ना अभियान 2083 शुरू भइसकेको छ। सबै अभिभावकहरूले आफूलाई पाएक पर्ने नजिकको विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ। अध्यक्ष टोप बहादुर केसी, नारायणपुर सामुदायिक सिकाई केन्द्र तथा अध्यक्ष मणिराम ढुंगाना, भानु सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र सत्ती।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिले रही था कभी झोले फटाका आजी था काकना हो काकना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाऊं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटाका था बढ़िया ठाऊं से झोला लाना नहीं चिकटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सक्कु ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनिया हुकन म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज महीन ठिकरी वो घोंगी बड़ा खैनास लगता कहाँ जीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खैनास मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलट चलो जाए मैखन संगे जिम
1: चलो तो चलो।
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बो सेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनकल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9804410186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। लावा बरस 2083 साल के पावन अवसर में सक्कू दादू भैया दीदी बहनिया समाजसेवी बुद्धिजीवी स्वदेश तथा विदेश में रहल सक्कून में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
2: अध्यक्ष लौटन चौधरी सचिव पंकज चौधरी कोषाध्यक्ष शर्मिला कुस्मी थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्रीय कार्य समिति टीकापुर कैलाली।
3: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
3: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
4: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
5: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर। न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिना रासनका गरगनारो पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टीकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 9868147979 9824625232। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 9824678225।
0: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक व्यापारी शुभचिन्तक दाजुभाइहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ दैनिक उपभोग्य सामान पाइनुका साथै मसालाका विभिन्न आइटमहरू पाइन्छ, जस्तै चिया मसला अचार मसला चामल दाल तेल नुन कालो नुन लगायतका थुप्रै सामानहरू पाइन्छ। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। रीतिका मसला उद्योग सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको अगाडि सञ्चालन भक्त बहादुर तमट्टा सम्पर्क नम्बर 9844833821। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। सहकारीको सिद्धान्त हातमा हात सामुदायिक सहकारी तपाईँको साथ। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेर सदस्य संचालक समिति सल्लाहकार समिति कर्मचारी वर्ग इष्टमित्र शुभचिन्तक लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति एवं समृद्धिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष पल बहादुर बस्नेत व्यवस्थापक दीपक कुमार वैद्य सामुदायिक सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार शक्ति कैलाली। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो शेर सदस्य संचालक समिति सल्लाहकार समिति लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। आज भोलि हावाहुरी धेरै चल्छ, त्यसैले आगो लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। आगो लाग्ने वस्तुहरू सुरक्षित राखौं र आगो जन्ने वस्तुहरू जथाभावी नफालौं। अध्यक्ष जित बहादुर चौधरी, शक्ति कर्णाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह परिवार, टिकापुर सात, शक्ति कैलाली।
2: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग लगायत देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उत्साह र उमङ्ग सहित सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण कस्मेटिक, भान्सामा प्रयोग हुने सामान, यसै गरी जुत्ता, चप्पल, खेलौना, प्लास्टिकका सामान, सरसफाईका सामान र फास्ट फूड का सामान अब एकै ठाउँमा पाइन्छ।
0: सेभेन रेनबो मार्ट, टीएमसी रोड, जमरापुल नजिकै, टिकापुर कैलाली। संचालक बेन्तीराम चौधरी। मोबाइल नम्बर 98485002008।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजिक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने हुकुन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोलाफ सम्र पात्र ओ नेपाली पात्र म फेसन टिहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से शीत भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति के प्रथम साधारण सभा, शीत भण्डार निर्माण के बाकी काम निर्माण शुरू, सामुदायिक स्वास्थ्य इंस्टीच्यूट टीकापुर के चौथो चुनावी साधारण सभा शुरू, बैशाख भितर एसई नतीजा सार्वजनिक हुईना अंतिम तैयारी में परीक्षण नियंत्रण कार्यालय, औ पाकिस्तान के बन्नू जिला में कार बम आक्रमण हो गोलीबारी में 12 प्रहरी की मृत्यु। रानी जमराला कुलरिया सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था मूल कुला समिति टीकापुर के अध्यक्ष कुमारा शाही की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम में रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई के प्रमुख भरत कड़ेल के शीत भण्डारण निर्माण के अभिनसम अवस्था बारे जानकारी दिलबाट आयोजना के सहयोग में शीत भण्डार निर्माण अंतिम चरण में पुगलवा। शीत भण्डार निर्माण गत वर्ष 85% निर्माण सम्पन्न हुईला को यह वर्ष बाकी काम शुरू हुईला। शीत भण्डार निर्माण के बाकी काम पूरा करकलाक निर्माण व्यवसायी 2083 के मंगसिर समय म्याद दिलबाट अस्थक वर्षसम शीत भण्डार संचालन का आयोजना के तैयारी रहलबा। बाकी रलक निर्माण कार्य विद्युत तथा रेफ्रिजरेशन कार्य भिटी रहलबा। यी दुई कार्य के लाग छुट्टा छुट्टी ठेक्का करके 1,34,66,915 में निर्माण कार्य शुरू हुई बा। अब आयोजना के 75% उपभोक्ता के 25% लगानी बा। इनसिया का आयोजना के 80% उपभोक्ता के 20% लगानी में 7,06,69,000 मशीत भण्डार निर्माण हुई बा। 1,000 मेट्रिक टन क्षमता के शीत भण्डार विशेष करके आलू भण्डार के लाग प्रयोग करने योजना बा। आयोजना के शीत भण्डार संचालन के लाग कार्यविधि निर्माणकर्तीबाट हो व्यावसायिक योजना बना सकलबाट भवन निर्माण पाछा जल उपभोक्ता मूल समिति यहाँ हस्तांतरण करना हो कुछ समय संचालन लाग सघैना आयोजना प्रमुख कड़े के कहिबा। शीत भण्डार संचालन के लाग उपभोक्ता इन्स्याग 1,31,00,000 लागत सहभागिता जनलबाट एचओ 33,00,000 लगानी कर पर्णाबा। यह वर्ष जल उपभोक्ता समिति 7,00,000 लगानी कलक बाकी रकम उठना कर्म अलग जनलबाट। उपभोक्ता शीत भण्डार निर्माण के लाग 53,00,000 रकम 2081 साल में टीकापुर नगरपालिका 74,00,000 सहयोग कलर सेफे चालू आर्थिक वर्ष में जानकी गांवपालिका फेर 15,00,000 छुट्टी लबाट। उपभोक्ता समिति में 4,596 शेयर सदस्य रहलबाट उमह 71,683 शेयर की तारल सेफे शेयर रकम 71,68,300 पुगलबा। अभिसम साधारण सभा के लाग 678 जना पार्षद रहे। कार्यक्रम में बोलती जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी के आयोजना शुरू कलक सिंचाई आयोजना पुगैना कृषि उत्पादन में बढ़ेना उद्देश्य केलिक रलसेफे धीरसे शीत भण्डार विद्युत उत्पादन जसिन कार्य करके सुविधा विस्तार कलक बोटीलबाट। वहां पुर्खा के कुल आधुनिकरण हुईलक बिजुली उत्पादन करके वार्षिक 15 करोड़ के विद्युत बिक्री हुईलक हाइड्रो पावर के किसान मफे शेयर पाई पर्ना बोटीलोट। अध्यक्ष चौधरी हरेक परियोजना में से लक्षित वर्ग में फायदा हुई पर्ना बात में ध्यान दे पर्ना बटैटी शीत भण्डार संचालन फिर यहां के किसान के आर्थिक स्तर में सुधार आई पर्ना में जोड़ दिलबाट। टीकापुर साना शहरी खाने पानी तथा सरसफाई संस्था के अध्यक्ष खड़क धामी सिंचाई योजना के किसान के क्षमता अभिवृद्धि उत्पादन वृद्धि संग उत्पादन भण्डार में समेत सघैना खुशी लगलग बोटिलोट। सामुदायिक स्वास्थ्य इंस्टीच्यूट टीकापुर चौथो चुनावी साधारण सभा शुरू हिलवा। साधारण सभा के उद्घाटन करती टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष राम बहादुर भण्डारी कोरोफे संस्था बलगर बनाइलाक वाकर व्यवस्थापन बलगर हुईपन्ना बटी व्यवस्थापन में ध्यान देना सुझाव दिलबाट। उपाध्यक्ष रंग प्रसाद अधिकारी स्वागत हुईलक कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष गणेश प्रसाद ओझा वीरेन्द्र बहुमुखी कैंपस के सहायक कैंपस प्रमुख द्वारिका भण्डारी लगाये शुभकामना मंतव्य धरला रही। संस्था के अध्यक्ष बीर्ख बहादुर शाह की अध्यक्षता महिला कार्यक्रम में संचालन सचिव जनक खड़का करला रही। पहले सीएम ए कार्यक्रम संचालन करती रहल सामुदायिक स्वास्थ्य इंस्टीच्यूट वह कार्यक्रम बंद हुई बस सामान्य चिकित्सक एचए कार्यक्रम संचालन कटी रह भेट जेटीएम मफे विद्यार्थी भन्ना नैहुलक अब कार्यक्रम बन्द रहल्बा। तेस्रो वर्षमा चल्तिरहेको सामान्य चिकित्सक एचए कार्यक्रम अब 119 जना विद्यार्थीको र अध्ययनकर्ती रहलबाट। चुनावी साधन सभा आगामी 3 वर्षक लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न हुलबाट। डाङ्की दिखुरीमा फोर्स गाड़ी दुर्घटना हुलक 4 जना घाइते हुलबाट। घोराहीमा प्युठानके बाहिनतर्फ जैती कलक लु 2 ख 6029 नम्बरके फोर्स गाडी महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिका 4 मौरी घाटमा दुर्घटना पर्ला। बिहानकै गरिब 10:15 हो पर्लक। दुर्घटनामा 4 जना सामान्य घाइते हुलक। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डाङ्के सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायक परीक्षक रेशम बोहरा जानकारी दिलबाट। प्रहरी नायक परीक्षक बोहराकी अनुसार घाइते हुकनके भालुबाङ अस्पतालमा उपचार भेटिरहल्बा। घाइतेकी पहिचान दुर्घटनाकै कारण खुल नै सिक्लक। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डाङ जनेलबाट। खोजखबरमा एकरी विश्राम विश्राम पाछ फेर सीआईबी सुन्तिरवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: टिकापुर नगरको प्रथम शैक्षिक धरोहर वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि तपसिलको कार्यक्रम बमोजिम कक्षा पीजीदेखि कक्षा 9 भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
2: भर्ना कार्यक्रम
1: नयाँ विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुभारम्भ 2083 वैशाख 2 गतेबाट। नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ सुरु 2083 वैशाख 7 गतेबाट।
2: वीरेन्द्र विद्या मन्दिरका विशेषताहरू:
1: विद्यालय हाताभित्र स्वस्थ हरित वातावरण भएको,
2: दक्ष र अनुभवी शिक्षकबाट अध्यापन गराइने,
1: एकै परिवारका 3 जनामा 1 जनालाई निशुल्क छात्रवृत्ति दिइने,
2: विद्यालयमा घेरा पर्खालका व्यवस्थाका कारण बाल बालिकाको सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको,
1: सीसीटीभी क्यामेराद्वारा शैक्षिक गतिविधिको अनुगमन गरिने,
2: नेपाल सरकारको नीति अनुसार जेहेन्दार दलित जनजाति महिला अपाङ्ग अनाथलाई निशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिने, अंग्रेजी मिडियममा पढाइ हुने, पर्याप्त खेल सामग्री र खेल मैदानको सुविधा भएको,
1: ई पुस्तकालय तथा पुस्तकालयको सुविधा रहेको,
2: हालसालै जडान भएको शुद्ध स्मार्ट खाने पानीको सुविधा रहेको,
1: विद्यालयको खेल मैदानमा नवनिर्मित अत्याधुनिक कवर हल भित्र विविध अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने,
2: स्काउट प्रशिक्षणको व्यवस्था भएको,
1: कम्प्युटर ल्याब र विज्ञान प्रयोगशालाको पर्याप्त सुविधा भएको,
2: बाल मैत्री शैक्षिक वातावरण भएको,
1: विद्यालय हाताभित्र स्वास्थ्य चमेना गृह सुविधा रहेको
2: र प्राथमिक उपचार र विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको।
1: प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
2: फोन नम्बर 0191-560-220 र मोबाइल नम्बर 98-584-23-220 र 98-678-80-911।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र?
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाइ शाखा टिकापुर कैलाली।
5: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक म बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पॉलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पॉलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, गोलचोक लगह, टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
3: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुअबेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुञ्जिना दाग देख पर्लसी हात गरा झमझम गर्ना तथा मास सुहाक बठिना हुइलसे कुष्ठ रोग हुइसेक्ठा।
6: कुष्ठ रोग महिला व पुरुष जेहिफे लागसेक्ठा। कुष्ठ रोगको शंका लगेकी लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल आईएनएफ नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
3: महिला उक्र अस्पतालसम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्नो घरक पुरुष उक्र मद्दत गरी।
6: कुष्ठ रोग मुक्त समाज निर्माण का लाग साइनिङ अस्पताल आईएनएफ नेपाल बाँके से जनहित में जारी संदेश।
0: विश्राम पाछा फ्रेसी स्वागत बा। परीक्षा नियन्त्रण कार्यले 2082 सालकी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईके नतिजा प्रकाशनकै तयारी लगलबाट गत चैत 19-29 गतेसम्म सञ्चालन हुइलक उक्त परीक्षाकी उत्तर पुस्तिका परीक्षा समाप्त हुइलकसँग परीक्षण एवं सम्परीक्षण हुला लगलक उक्त कार्यले यही वैशाख 29 गते भित्र परीक्षा फल सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मोटिलोबाट परीक्षा नियन्त्रक टुक्राच अधिकारीकै अनुसार हाल 35 जना कर्मचारी टेबुलेसनमा व्यस्तबाट वैशाख 29 गते भित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न लक्ष्य रहलबा। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यासी व्यवस्थापन तथा उत्तर पुस्तिका परीक्षा निर्देशिका 2082 परीक्षा सम्पन्न हुइलक बढ़ीमा 3 दिन भित्र उत्तर पुस्तिका परीक्षण करस्यकपना व्यवस्था बा। गत वर्ष नियमित स्तर वृद्धितर्फ कलक 5,12,421 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुए। धनुषाकी मिथिला नगरपालिका 9 लालगढ़ लगह पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आइतबार यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुलक चालक सहित 17 जना घाइते हुलबाट इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्के ओर्के अनुसार काठमाडौँमा बिरातर्फ जैती कलक बागमती पर्दै 01006 X5237 नम्बरकै बस पटल रह इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्के ओर्को बसे प्रहरी निरीक्षण लक्ष्मण केसी दुर्घटनामा पलक बस ओ दिशामा से आघ गैटिरहल X01001 X4224 नम्बरकै बसमा ओभरटेक गरके पाछ भागमा ठोकल पाछ अनि ती थुके बागमती पर्दै 01006 X5237 नम्बरकै बस सड़कमा पटल बोटिलोबाट दुर्घटनामा पलक बसमा सवार 33 जना यात्रु मध्ये चालक सहित 15 जना घाइते हुलबाट घाइते हुनके लालगढ़ी स्थित मोडल अस्पतालमा उपचार भेटिरहल प्रहरी उहाँ जानकारी दिलबाट ठक्कर लगलक और बसमा सामान्य क्षति पुगलगवा दुर्घटनामा पलक दुनू सवारी साधन नियन्त्रणले के थप अनुसन्धान आघ बढ़िलक प्रहरी निरीक्षक केसी जानकारी दिलबाट प्रहरी के अनुसार घाइते मध्ये चालक मकवानपुर हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 9 निवासी 43 वर्षीय विष्णु घाइते हुलबाट भारत के आसाम निवासी 50 वर्षीय विराज सेको 35 वर्षीय सतन सेके कपारीमा तथा शरीरमा मध्यम चोट लग्ला सेफे 28 वर्षीय अफताप अनुसारी सामान्य घाइते हुलबाट अस्तक सुनसरी हरिनगर निवासी 20 वर्षीय सुजन यादव उदयपुर चन्दनगढ़ी 6 निवासी 32 वर्षीय अजय काफ्रे काठमाडौँ महानगरपालिका 32 निवासी 21 वर्षीय रिद्धि खड्की हो 21 वर्षीय शरण खड्की फ्यो खाइते हुलबाट धनुषाकी गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 5 निवासी 42 वर्षीय ललिता भुजेल सलराही लालमन्दी 1 निवासी 38 वर्षीय दिजेन्द्र नेपाने सहचालक मोरङ विराटनगर निवासी 28 वर्षीय मुकेश शाह तेह्रथुम थथर गाउँपालिका 4 निवासी 28 वर्षीय कविता भुजेल सुनसरी धरान 17 निवासी 34 वर्षीय मेरी राई छापा झिलझिले 8 निवासी 20 वर्षीय न्युसन थापा सुनसरी इन्द्रुवा निवासी 33 वर्षीय राजकुमार उराउ सिराहा मिर्चैया 1 निवासी 44 वर्षीय रतनदेव मण्डल तथा सुनसरी इन्द्रुवा निवासी 33 वर्षीय सन्तोषी उराउ घाइते हुलक प्रहरी जनबाट। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछा फेरि विश्वतिर विशा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
7: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
8: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
7: मिस्तरान बर्जना हुकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
9: यूपी भिसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा की उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
12: जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
11: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
13: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
12: आउने दिन जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
11: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825677772।
14: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
15: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: विश्राम पाछा फ्रेसी स्वागत बा विदेश की खबर। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा शनिबार राति के हुइल कार बम आक्रमण हुइपा छ। गोलीबारीमा कम्तीमा 12 प्रहरीको मृत्यु हुल छ। 5 जना घाइते हुलबाट बन्नु जिल्ला के फतेह खेल क्षेत्र मरला प्रहरी चौकीमा आक्रमणकारी विस्फोटक पदार्थ भरलक सवारी साधन ठोक्का कि विस्फोट गरेलक। स्थानीय प्रहरी अधिकारीहरूको बटुलोबाट विस्फोट पाछ कोष 17 समूहकी सदस्यहरू चौकीमा प्रवेश गरे। प्रहरीको उपर गोली चलेलक। जनलबाट बन्नु प्रहरीकी एक अधिकारीकी अनुसार घटनामा 12 प्रहरीकी मृत्यु पुष्टि हुँदछ। एकजना अभिन विपट्टारहरूबाट अधिकारी र आक्रमणकारी र भारी हतियारकै संग कम ड्रोन के समेत प्रयोग गरेको जानकारी दिलबाट प्रारम्भिक जानकारीकी अनुसार आक्रमण पाछ लौटना क्रममा आक्रमणकारी र प्रहरी हतियार हो। कुछ कर्मचारी फेलेकी गैलक बोटेलबाट बन्नु पाछक वर्षमा बहदो सशस्त्र गतिविधिमा से प्रभावित क्षेत्रकै रूपमा रतिएलकबाट पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीच सीमावर्ती क्षेत्रमा बहदो तनावकी बीच यी आक्रमण हुइल। इस्लामाबाद के अफगान भूमिहको समूह के लाग सुरक्षित आश्रय स्थल हुलक आरोप लगाइटी एलएसएफए काबू ओहो आरोप अस्वीकार गरिएलबाट पाछक महिनामा दुनु देशकी बीच सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्दी गैलको सीमावर्ती क्षेत्रमा हिंसात्मक झडप समेत हुलक उल्लेख गर्नबाट यही समाचार सँग खोज खबर वरल जनाइसे पहिले खबर के मुख्य शीर्षक फेरि एकचो। शीत भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति के प्रथम साधारण सभा, शीत भण्डार निर्माण के बाकी काम निर्माण शुरू, सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्यूट टीकापुर के चौथो चुनावी साधारण सभा शुरू, वैशाख भित्र एसई नतीजा सार्वजनिक हुइना, अन्तिम तयारीमा परीक्षण नियन्त्रण कार्यालय, ओ पाकिस्तान के बन्नु जिल्लामा कार बम आक्रमण ओ गोलीबारीमा 12 प्रहरीकी मृत्यु, लिटा बक्ला खोज खबर रत्र प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डीटी अबक्ला खोज खबर से मै सीता चौधरी विदाई टू एकर पाछा 6 बजे के खोज खबर सुन सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीका पुरा एफएम सुन्ती रवि राम राम।
16: आरएमई स्कूल टीकापुरमा विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
0: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित आरएमई स्कूल टीकापुरमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
16: आरएमई स्कूल टीकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 091561250 र 091560712।

रहित सुशासन युक्त देश निर्माण कर क्लार्क सक्कु जाने सहयोग गरे। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सक्कू ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ लीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलट चलो जाए मैफन संगे जिम
1: चलो टा चलो
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बो सेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाइट संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनकल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9806410186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। लावा बरस 2083 साल के पावन अवसर में सक्कू दादू भैया दीदी बहनिया समाज सेवी बुद्धिजीवी स्वदेश तथा विदेश में रहल सक्कून में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
2: अध्यक्ष लौतन चौधरी सचिव पंकज चौधरी कोषाध्यक्ष शर्मिला कुस्मी थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्रीय कार्य समिति टीकापुर।

0: नयाँ वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक व्यापारी शुभ चिन्तक दादू भैया दिदी बहिनी हुकन म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आत्महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ जीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलट चलो जाए मैफन संगे जिम
1: चलो तो चलो।
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बोसेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनक कल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9804610186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। लावा बरस 2083 साल के पावन अवसर में सबको दादू भैया दीदी बहिनिया समाजसेवी बुद्धिजीवी स्वदेश तथा विदेश में रहल सबको उनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
2: अध्यक्ष लौटन चौधरी सचिव पंकज चौधरी कोषाध्यक्ष शर्मिला कुस्मी थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्रीय कार्य समिति टीकापुर कैलाली।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
2: कोट पीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
1: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
2: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
1: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली